हेलो हेलो हेलो टेस्ट हेलो टेस्ट हेलो टेस्ट रेडियो सारंग हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो टेस्ट।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: रेडियो
0: हेलो रेडियो सारंग, हेलो रेडियो सारंग,
1: सर।
0: हेलो
1: हेलो
0: रेडियो
1: रेडियो
0: सारंग,
1: सर।
0: हेलो
1: हेलो
0: रेडियो
1: रेडियो
0: सारंग,
1: सर।
0: हेलो
1: हेलो
0: टेस्ट,
1: टेस्ट।
0: हेलो
1: हेलो
0: चेक,
1: चेक।
0: हेलो
1: हेलो
0: टेस्ट,
1: टेस्ट।

असल कलाकार मंगलूर प्रस्तुत करतात कोंगणी सामाजिक नाटक बोंगो बरोपी नेल्लू पेर्मानूर पात्र परिचय विल्सन डिसोजा कुलशेखर फेलिक्स लसरादो पेर्मानूर ऑलविन वेगस राजेश मिया पदव नेल्लू पेर्मानूर अनु बिजय ब्लेजी मोंतेरो शॉन रोड्रिगस कैनी डिसोजा डिंपल पेंटो दिव्या डिसोजा सेलिन डिसोजा संगीत सतीश सुरतकल पोदा वनिल वेगस फोटोग्राफी अनु बिजय तर बोंगो या सामाजिक कोंकणी नाटकाचो मुखार सेल्लो वंटो या प्रसारांत ऐकोव्या.

0: बिरमोत तू जाकी पहले हवे तो ची बिरमोत पावा जी असली हाँ बिरमोत पावा ना बिरमोत पाव तू कौन मागुन काम ची बिकारी तू का कितने काम है सांगा
1: अंदान अंदान नहीं वे तू कितने दम ताई
2: अनित्या दोन अंतर्गत नतल्या स्वरूपा मगर रावत कोण
1: हाव रोता Ulaiko! గరుడ రేఖ్యాస్తున్నారు సురోపి సుల్పిన అతంత గరుడ రేఖ్యాస్తున్నారు సురోపి సుల్పిన బికాస్ గరుడ రేఖ ఈస్ ఇన్ మై హ్యాండ్
3: తూంగిద్దారా ఎవడే మరువురావులే नहीं रे थे एक बैत काने ना राहत आई नहीं रे थे बैत किधर नहीं चलने का
4: तू कहाँ बत ना ये
3: किधर नहीं चल रहा
4: ये हम कहाँ पुलिस डिपार्टमेंट अंदर नहीं चल बैत ओले लड़े कन पट्टा ना दोन सड़ाम नो
3: दोन सच्चा ही नहीं नहीं चार खाता ही विद्या देवा तू
1: नहीं बैत किधर आते हूँ जन मका गुत्ता सा
4: वो का बिंडी जलाम गुत्ता ची
1: अंका पुलिस आंग पियों टाइट जान कहीं पड़ा होता ही नहीं टाइट जलर अशर रहा हूँ
4: अल्लाह डेनिस ओमा
3: पुलिसा टाइट आता तो नहीं रहे तू जलाए
4: बाहर काले
3: कितने अग्रह शेम्पियों सत्रांग उपाध दिता है कितने उपाध आता ही रहे
1: उपाध रहे उनके तुझे तसल्ली है कि हाँ ये उपाध कौन यहाँ मुझे परिस्थितियों ते जीवित सत्ता तका मुझे समस्या और सत्ता
4: अलरे समस्या सबनो पीएलआर दायना रे
3: कौन सा ही समस्या हमी समस्या मुन मोती द चिंतलर मात्र तो समस्या
4: कंचा के परिहार सा तो समस्या नहीं
3: कंचा के परिहार ना तो नीज समस्या
4: हाँ क्या नाला तेरे सर के संगले देनी समा
3: कर ले
4: मुझे डे एक बारी तो क्या ही करता था
3: तू जगड़ आई डे था तने
4: सिली समान मुस्तु पौधा गड़ लेने थका था ने थालो ए बोसेला हमी ते पौधा इंची एक सीढ़ी गड़ लेर कसे आई नीचे
3: तू क्या कहे दूसरे काम ने
4: किधे काम गल रहे निसमा
3: ता तांगा पियो नो टाइट जान ऊपर रहूंगा तांगा ना हुआ ताजी नाइट करूंगा सर
1: पिसो गंसो पिसो मुझे जीवित चीन नहीं तो जाऊँ नहीं अनेक गई मैं का वोडों की बिल्ली क्या करता हूँ वो सीढ़ी क्या
3: पहलिसा जीने अंते कंची एक गजल गंभीर आयन कान गए ले रे तू का ये गते दिना रे ये गते दिना जीने अंते समस्या मोती तो बेजार है कन्या नू तू चाहता सिले कितने शे देने आवं तो कलाकार आज पिंगा दात
4: तंगे एक देख जा रहे
3: तंगे एक वेदी जा मुन्शान मान के ले रहे जाइने पुरी ले जा चलता ना कितने ही करता इधर ते मान दूँ कर
1: कितने ही करता इधर मान दूँ कर
4: हाँ करेक्ट
1: मान दिवन से सरोपी है ताने
3: ये बारे का
4: नहीं देनी समा अने सोरे पियों जे सोड़ ले रहे मागी जीव माँ सोड़ूं बाकी
1: तो तुम सोड़
4: पांडम
3: पेलिसा हरियकांत कुशल ही नहीं रे हरियकांत कुशल ही नहीं अरे ना ये का मान फंडे तान संगलांगी
1: कितने ही करता है
3: ते मान दिन कर वारे बाढ़ दे वजह सोड़ सोर उल्लो सोर नहीं शिरकल लो मात्र सोर
1: कितने ही करता है तर मान दिन कर
4: वही
1: सोर लो सोर नहीं
3: बिल्कुल नहीं
1: शिरकल लो सोर
3: हाँ
1: तोर तो कितना शिरका था
3: ये हमारे कंबल
4: नहीं नहीं समा ताने केलने काम हो समा मान दिन करूँ ना स्टेले ना लग सी भी कौन ची
1: तो सही नहीं
4: पायर का सही
1: कौन क्या दाला कितने कितने जाऊँ का सागी तेंजाइजस
4: आता एंडा साल पान मरे ही
3: तेरे तू कहीं तो शंजाला मंटा है कि क्या कर मुला रे ओ प्यून ओ तो तेरी नकल मुनो ओ थोड़ा नहीं ले बुल मारू सोटला सोटला अने हाका तो जीवी जीवी सक्सा साइड है क्या कर मुला रे अशन सुमनो लेट के लेंगे बहुत जो कुंग तू करन दे
1: सकड़े या जागी नहीं अनिकाल का सकड़े पीड़न

0: ले ले।
1: कितने?
0: हमें ऐसा नहीं लेकर साल डैडी लगी मुझे ले ली।
1: ना, बोलो ना, आज तो लेता। संग ले बोरी मकाई पैशन जी गर्ज असल।
0: पैशन जी गर्ज असल दी या ना असल दी? हे गर, अनि वो दोन एक रो जा गोवी कनु, आम काम सम सो वांट दियो दी तो मातारो।
1: त्या विषयांत डॅडी लागे आज तो लेता। हां सांगले बुरी तू काय गुड न्यूज असा
0: किते
1: वे आमच्या इथे या सगळ्याक 50 लाखांची पार्टी रेडी असा।
0: 50 लाख मातर एक दोन या 4 लाख देऊनचे बाकीचे आम्ही सवांटे करचे या हळ्ळेंत राहूचा की सिटीचा फ्लॅटान असून इंडिपेंडेंट जाऊन राहूया।
2: वीरा जीप सामान लय एक पोटो नसले कुटा मो तीर कुटा कर नवा टाका लून पळे नका।
0: आयलो पोट्टू हिरो बाप आयते की इत पुत एक्वेरियम अंतास चमास लेक आपण असो जागो विशाल दिसता पण आरशा कापटा तनन सुगतू आपण बंदडें दा सामन या बंदडें ते सुटोन शहरा कोसन इंडिपेंडेंट झोन राव्या।
2: हंगा सर तुझा कोण आहे बंदड घाल्या?
0: कोण आहे घालू ना मुझे पोटा नसे बुर्गेंस मका एक बंदर
2: शे या बायला जा सिलेंस बिल्ली तू ये दाद लो जाऊं की त्या से करता है।
1: ए कौन रे तू?
3: कौन रे तू?
1: बरा एंड डैडी लागे उलो नो ये आज तू एको नो पैसे वांटे करूं सांग।
2: बिल्ली हंकर तुझा मेन द्वार सटला।
1: ए वे रे वे अंकार मुझे में दुआ सटला किते आता तुझे ए किते रे तुझे बैंक डांत बॉल ना जला रे वन्नी मुझे लगी वो लोग के ताई ने
2: उल्टे हुले ना था बिल्ली उल्टे हुले ना का

0: आंटी।
1: गुड, कीप इट अप विनीत। हमें तो का पहले संग लेना है। तू का एक बरो फुड़ा रसा। तू जा जा क्या रिचे दे ने? तू जा रख तंद सुवाला नहीं ला। प्रयत्न के लार। तू कर तो एक बरो गाँव पिज़ा तो ले।
0: मक्का मोर रसा। पुन पप्पा सोड़ी ना ने?
1: पप्पा सोड़ी ते। ता चलेगी हाँ उलेता। तू फिर क्या जा कोई रान जॉइन जा? तेंस है तू का सबार आउ कास मेल तले। संगले बरे, तुझे फ्रेंड ना प्राइज मिलो ना रे?
0: ना आंटी, बीर मोत्ता जी। ये कर दीजा सिंगिंग कॉम्पिटिशन ना मगा पर्स प्लेस अंकल।
2: ओ, कंग्रेचुलेशंस माय बॉय।
0: थैंक्स अंकल।
2: उस तो बहुत लिया ना सीधा करा सुन सेटी बैठा की, उन्होंने लाता कंगोर ला, दुआ मुड़ के का।
0: नहीं अंकल।
2: नहीं खुशी। पापा ये बुरी ओड्लो सिंगल साहब होता रब तो माते ही बदल जाए ना
0: का अंकल।
2: उस उस उस
3: ನಾಟಕ ಸುಮುಖರ್ಸಿಲ್ಲುವಂಟು ಫಲಂಚ ಪ್ರಸಾರದ ಮೇ ಐಕತೆಲ್ಯಾಂ ಐಕತ್ರವ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ 107.8 FM ರಂಗ್ ರಂಗಾಳ್ಚಿನಿ।